आने भी ले रहे उतने के दियो और दसई सही अने बम फरा दे दूरों बम फरीदा दे दी होता को कुमसारे में फरा दे बुढ़ावे चाहे उन तो भले वे की करना को भी तुनाती दाए भले हम घुमाओ तो कना शाल गुदा थे की कर दो बुढ़ावे चाहे हो तक वे बम फरा दे हो तक वे गी गी सी ओं वजह से नो उतक को बुढ़ावे चाहे अना और उन्होंने मिताल दो खदी दे अंदे मिताल हदी दाए दे तक ए दे सवा कने तो बुढ़ावी एने वो तक सूर वो तक तुम तेना ते कम ते हो तेरा ते वा कानो मिंदारी भी फिर सवा कान ईद ना को अना और तुतकोले आए भी का महा ईद अको इदि फे तुतकोले आई शूमिया हमेशा ही काम ही है इद हमेशा ही काम ही है थिरे रे अनो अवली निकती नो कनात कितना आया एन उधायु इदि नो उन्होंने उनो काम हमेशा ही रसा तो दाई हने तिकते नहीं दो ना ना तुम कसोब सलोलती बोय अर्री वे देने इन एम तालू तक दाह दीदी उन तक अफामत तक इकते ना शालिक मीनान इन्हे भले कसे दी ए हने तोनत असर रीवे पत्त बिडावी अफामत दई वाई बा यानी हमसे बरे यानी माग मागी कनान ते ना हुंतिये था बिडिगल की बारो अल्लाह ने ने तुनी सरी हुए तो तुमागना इतर ना तो दई नया दे तुमागना इतुकना गुत गुत्ताई ती है तुम खदेरे अन्ने ना गई लौटाते हैं खदेरे ना ना तो तिंदिये तित्ते ना हुबू बुआ आन बते हो दाते है अरे उस जार हो है तित्ताने बता कस्ता उन उबाशर इदाबिर उबाशर दिबरीत उबाशर हदूब इदेना को इन बते हैं इन इन बली भोई दिया ने उधयुन अरे एन हो कना मुखदिर इतने तो न आमाग ना तो अरे बतू ना था तित्ते है ना तो तिंदिये का हुबूब दाय इतने ललाउता उन अरे रेवी बरार आहाते है आशीष इतने ना अरे आमाग सिजारत के दा हशिश को अस्तित ए इनेते है उन अरे रे वमीन का ना देखते ना उन अरे उस जार उकन हंदाई की के उन इल्तिहाब आप दन्नी सरतान आप दन्नी आम आगना गुदा दन्नी उन उधे अरे तुमागे तूकन गुदा होये तू उतक आवरे आम आग में करी लाम सोने वे कत्येक योम तत्कुई तुहतिर शूमित विफ्रिद और बक्तमीन एदना उत तुमागना आम बतो दीते ते तेना ते मकदिम बाते कस्ते हुई संगीत तो ना तू अरे उत्त मुखदिर अलवियान ताकना बुद होये ता या में इति देवने देहें हब्बात को आसी देवने देहें सिजार को आसी दुगेने देहें बाते कस्ते शबाब उदा एयाब उन्दा शबाब उकुन अरे मीं का तो न फुरूस व फगरंदी तो ही से नको रुकमा से सिजारत का बताया अम्मा से कजर रब ताया दीतित गले अरव भाई शोकी तेन तो शोके अरे तो न तुम गीति सकती दा तो शोके तुकन दायित कितते अरे वह उकना हन अमागु वह हो एह तित्ते न ते में ओधे इफा दिन ना ते एह उकना वह अंबीके को उकना अरे याने अल्बाल कब दी बेदने तुसेती तलाने वो बते हा ए सीने हो पर तो ना ती दाय तित्ते न ते में कस्ते शिवती उन ओधे ए तीरने ना हुआ हो इसे गने ना हुआ हेने ने सारी अरे उधरे इदमान इदने न ते है तू न सके बरू को नुस जार को ए तर तित्ते मुखदेरा को ए तारो तित्ते न भाव अंबरे को ए वशरो किस कत्तिम ने वशरो कत्तिम नो बेन उधर बरू होक फिरा तिंदिया क मराकिज एफेन इने मराकिज मीन का दिवातिब का मराकिज एफेन मुस्तचफा है बेती सकनात नियक मराकिज मीन रिसेनो क मराकिज ना दीते मराकिज अतिंदिया इत ओ तक अदमी ना तू न बशरी वो इफ सकत कतिय अंबरो हो फराने थाय इकतेन बेत तो ना ती दाय उन उधई उन्ने अदमी ना होई गूद तक है एक मराकिज बेची उन अने बग दीते ना बारी बग दीते ना उस जार गुदात को आबू तारो मुखदेरात को आबू कक्सा का आबू बेत तो ना ती तित्ते ना होई फिर अने दीती इन्हीं वो बलिम बरा मेल दाय के तिप्ती तुम्हेले ती तो ना सिलित हो फरान उत्तो ना ती दाय होई गूद तक है के वियत तो ना तो मराकिज बेची तो ना होयो फरेत तो ना तो अरे दूला बाकाई तक है होई संगीत तो ना तो वह ही मीने का ते थब्बा हुआ अरे थब्बा नहीं आदो अरे ऐ नहीं मीने का थब्बा बारी हुए थब्बा हिने नहीं आदे जिमा बेबारी थब्बा ते मुखदरा गोई ने का सूर ऐ भी ने का रावा का तो एकाती ने ते हैं उन बाते अरे उकना मुखदर इतने तो ओसे मुखदर ना मैं आदो मुखदर उकना लालस्ती हो तो ना तिनीनो बशर लाले इनीनो बेत तो ना ती दा हिने तेन बाते होई सिगी ने नहीं आदो कना शाल्ला
ಹೋಗಿ ಸ್ತಿಸೇಗ ನಾ ತಿ ಮಗನೇ ಕಸ್ತೆ ಚಾಲ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನೋಕನ ಏನೇನಿಸ್ತೀರೋಕನ.